0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: अचानक आपका
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो

0: रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, भजन यात्रा प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। तो चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सुंदर सा भजन होगा पंडित गजेंद्र शर्मा जी की आवाज में।
1: मेरे सत्संग प्रेमी सज्जनों, अगर निश्चिन सुबह और शाम को अगर एक बार भगवान का भजन सुमरण करेगा तो निश्चित रूप से 84 के आवागमन से छूट जाएगा, और इसी भजन में दर्शाया गया है। आइए सुनते हैं

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरिओम शरण जी की आवाज में, हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुन

0: हरिओम शरणजी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार बुधराम की आवाज में एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: दया धर्म

लेकिन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह की तरह आज सुबह भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर।

की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा, पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा का प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

वॉइस ऑफ प्रदीप के आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना
1: धरती।
0: और सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: ट्वेल्व जी की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, यहाँ तक आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। कल सोमवार है और कल सुबह 7 बजे से फिर भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। आप सभी सुनने वालों को आज रविवार का दिन जो है शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

सभी सुन वालों की सेवा में एक बार फिर से मेरे तरफ से सादर नमस्कार और अदा बरसो। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है। नेह मिनटों पर नेह बादल छाया हुआ मौसम है भूवल क्वेर और रिमझिम बारिश भी हो रहा है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन 17 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम में तो चले सबसे पहले आप सभी को हम स्वागत कर रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। गुड मॉर्निंग खुद मोर्ख कहते हुए हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था आरती। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म हम किसी से कम नहीं उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-62-66-11 महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए गाना पेश की गई महेंद्र कपूर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए वही गाने पेश किया जा रहा है जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आश्रो में थे, गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। एड फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर यूत्रेख से। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर, लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में, एडो फिल्म नाइट इन लंदन।
1: Waar jij van houdt. Dit is Radio SBS.

मंगेशकर के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आशा भोसले एंड एड दे बर्बन यानी कि राहुल देव बर्बन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले और एड दे बर्बन राहुल देव बर्बन की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है पिया तू अब तो आजा।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा भोसले और एर डे बर्डमन के आवास में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म जिद्दी, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है हर एक काम काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। हम सभी 24 घंटे आप सभी के लिए बरा एक बार होते हैं हर एक कामों काज के लिए, जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर। फिल्म का

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 10:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वेटेड हो चुका है, 11:03 स्टूडियो टाइट हो चुका है और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। रविवार का दिन है, इतवार का दिन 17 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अभी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों हम आपको याद दिलाना चाहेंगे अभी 11 बजे से आप दरियाब कर सकते हैं सुपर मार्केटों को उदावा के पास में दुकान जो 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ पर जरूर आप तशरीफ फरमाइए अपना हर एक सामान के लिए।

पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आइडो फिल्म प्यार किए जा मन्ना डे, लता मंगेशकर किशोर कुमार एंड आशा भोसले प्रोग्राम में। मौसम आज का बदली बदली सा मौसम है, बादल छाया हुआ मौसम है और समय समय पर रिमझिम बारिश भी हो रहा है।

De film प्यार किए जा, फिल्म का नाम प्यार किए जा मन्ना डे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए देनहाग शहर के अंदर में कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर हॉलैंडीज का सबसे बड़ा इंडिया भारत देश का कपड़े का दुकान जो होते हैं मुस्कुराता, आज रविवार के रोज भी खुला रहेगा, तो जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए। कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर जो है देनहाग शहर के अंदर में हॉलैंड देश का सबसे बड़ा इंडिया भारत देश का कपड़े का दुकान जो है, जहां पर हर एक कपड़े आपको दिया जा रहा है इंडिया भारत देश का, और खास तौर पर दुल्हा दुल्हन के लिए भी यहां पर तरह तरह के कपड़े आपको दिया जा रहा है। सस्ती दामों में अपना हर एक सामान यहां पर आप जाकर खरीदिए। इंडिया भारत देश का हर एक कपड़े नई से नई मॉडल यहां पर हर सप्ताह अंदर आते रहते हैं। कपड़े के साथ गहने, तमाम मूर्ति यहां पर बदांकियस और तरह तरह के सामान यहां पर आपको दिया जा रहा है। सस्ती दामों में हर एक कपड़े यहां पर आपको दिया जा रहा है, और जिस तरह से हमेशा मैंने आपको खबर किया, अगर आपको सस्ती दाम में नहीं दिया तो जरूर रेडियो SBS को आप कॉल कीजिए, तार कीजिए, और जब भी आप यहां पर कहेंगे कि रेडियो SBS ने आपको भेजा है, तो मुझे यकीनन मालूम है कि आपको बेहद सस्ती दामों में तमाम कपड़े, सीरादन, जूते जो हुआ, सब के सब यहां पर जो भी सामान दुकान के अंदर में है आपको सस्ती दामों में दिया जाएगी। आज रविवार की रोज यहां पर जरूर आप तशरीफ फरमाइए मुस्कुराता दुकान के पास, जो हॉलैंडीज के अंदर में सबसे सस्ता दुकान होते हैं और सबसे बड़ा दुकान भी होते हैं। चलिए प्रोग्राम में फिल्म धरती की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई फिल्म धरती, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों, आने वाले रविवार 24 तारीख मई, सोंदग 24 मई रोटरडाम आहोई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। टिकट आप खरीदना चाहेंगे तो जरूर आप जाइए iStripTickets.com वेबसाइट पर, और उसी वेबसाइट के जरिए अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। सोंदग 24 मई, एक सप्ताह के बाद जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं, और टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है। iStripTickets.com वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। तो आने वाले रविवार सोंदग 24 मई मिलकर, हम सभी मिलकर जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट देखने वाले हैं।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। सुनने वालों, घर पर कोई भी खुशियां है, विवाह है, शादी है, सालगिरह है, जन्मदिन है या बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है और आप फरमाइशें देना चाहेंगे तो सिर्फ रेडियो SBS के जरिए आपकी फरमाइशें जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है इस महंगाई की जमाना में। 5 यूरो पर फरमाइश, 5 यूरो पर फरमाइश, आपकी फरमाइशें जो है बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो फरमाइशें अगर आपको देना है तो सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तारीख नंबर 030-265-65-60 पर या तो रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए आप मेल कीजिए या तो रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हर एक के लिए ये दाम रखा गया है 5 यूरो पर फरमाइश। और न सिर्फ फरमाइशें सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है लेकिन आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम, जो भी खबर है, जो भी रिक्लाम आपको देना है सस्ती दामों में, आपकी तमाम रिक्लाम जो है, खबरें जो है बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। तो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24 पर दख बड़ा एक बार होता है 24 घंटा लगातार आप काम में ला सकते हैं 030-265-65-60 या तो अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए, टैबलेट पर, कंप्यूटर पर, रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। 24 घंटे पर दख 24 घंटे आप काम में लाइए हमारा मेल और रेडियो SBS का ऐप। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप ऐप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर और उसी ऐप के जरिए भी स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं 030-262-6611। नया दौर फिल्म का गीत पेश होगा मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में, पूरे जब जब जुल्फे तेरी। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है अनहेल खुरमोर गुड मॉर्निंग।

आयशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 7:07 स्टूडियो टाइट हो चुका है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। मुझे मालूम है गाना आप सुनेंगे और काफी पसंद करेंगे। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा और दनहाक शहर के अंदर में इस वक्त 9:18 प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना बस सुनना चाहते हैं और गाना ये है मोहम्मद रफी की आवाज में, जन्म जन्म का साथ है।

तुमसे अच्छा कौन है, फिल्म का नाम जन्म जन्म का साथ है। गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, दरहल शहर का रहने वाला नौशाद, नौशाद इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, और ये खास गाना की गुजारिश किया जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, एक प्रोग्राम जो दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस हमेशा और रोजाना बस सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और डेल्फ शहर से आशा, आशा ये गाना बस सुनना चाहते हैं, मुझसे गुजारिश किया ये गाना बस प्रोग्राम में पेश करने के लिए, तो लीजिए आशा आपकी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है कि हर जन्म में हमारा

हर जन्म में हमारा मिलन गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई है आयशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में। डेलफ की रहने वाली डेलफ शहर की रहने वाली आशा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम रेडियो एसबीएस का बस सुनते हैं मॉरिशस

फ्लोरिडा में। सुनने वालों बस हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और खासतौर पर ब्राजीलिया में भी, सूरीनाम देश में, पुर्तगाल में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड में, जर्मनी, हाँ जर्मनी में भी सुनने वालों, काफी सुनने वालों जर्मनी, डचलैंड में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, इंडिया भारत देश में भी और खासतौर पर फ्रांकराइक में, बेल्जियम में और हॉलैंड देश के अंदर में तो हजारों हजारों सुनने वालों बस रोजाना प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि डीएबी प्लस द्वारा भी हमारा प्रोग्राम दूर दूर शहरों तक सुनाई देता है, पूरा की पूरा हॉलैंड देश के बीच में और दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम अपना मोटरकार में, अपना घरों में आप सुन सकते हैं। और मत भूलना प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में, जहां पर बहुत सी सुनने वालों है जो डीएबी प्लस द्वारा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, रोटरडम में कपेल आन द आइसल, क्रिम्प आन द आइसल, बारंद्रेख, रेडर कैरक में और साथ ही साथ सुतबेर, नो दौरफ, डेल्फ्ट, राइसवाइक, डेनहाग, बर्कल एंड रोडराइस, स्कीडाम में, स्पांसपोलर, और सेवन हाउसन से लेकर के खाउडा, वाडिंगस्वेन, बौद्धग्राफ, वुर्दन और ऐसे बहुत से शहरों होते हैं जहां पर सुनने वालों प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। आमस्वोर्ट शहर में भी, हिल्फर्सम एंड नतुलकोक इन आमस्टरडम साइटोस में, मौतकार में, अपना घरों में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। खासतौर पर सुतमेर शहर से एक सुनने वालों है जो एक खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है और वो है धीरज, धीरज सुतमेर शहर से एक खास गाना मांग किया है और डीएबी प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में 100 बार जन्म लेंगे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश की गए 100 बार जन्म लेंगे। सुतुमेर शहर का रहने वाला धीरज का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। हम देख रहे हैं कुछ सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप पर यही लिखा है कि खाय ओक नार जुबिन नौटियाल कॉन्सर्ट, हाँ हम भी जाएंगे मिलकर देखेंगे जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट रोटरडम आहोई में। जिन लोग टिकट को नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट के जरिए अपना टिकट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आने वाले रविवार सोमवार 24 मई जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में। आमस्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये खास गाना की गुजारिश किया है और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना होगा।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में KK एंड सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म

रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। आवाज में जिंदगी एक छाव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार

भी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार के नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जाए।

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो वेस भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए श्री जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में शान की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
2: जहाँ से मैं आया हूँ।
1: ओ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
2: प्यार।
1: जस्ट अ टिप, हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

तभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। क्यों?

प्रोग्राम में आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना का बोल है बोल मेरे साथिया, रोनी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कितना मुझसे प्यार है रोनी, रोनी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए। बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, फिल्म ललकार उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। 1:08 व्यतीत हो चुका है। एक सुनने वालों है जो हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ये गाना की गुजारिश किया है, संजय और रणधीर की आवाज में।

गंभीर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। आज रविवार की खास दोपहर का प्रोग्राम में कुछ लोकल नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलेंगे मिका सुक्कू की आवाज में एक बिल्कुल नया गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई प्रिया और पूजा की आवाज पे रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कुछ लोकल नखमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रूबेन की आवाज में अब की बार ये गाना।

रेडियो SBS की जरिए डेमियन की आवाज में ये गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। तकरीबन 2 बजे तक कुछ लोकल नख में लोकल गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

छह मिनट बाकी है प्रोग्राम में, दो बज रहे में एस मिनट ऑन फोर टू। कुछ लोकल गाने आज की दोपहर का प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चलिए एक आखिरी लोकल गाना बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों मत भूलना कि 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

क्या दिल दे कहा, उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 2:00 प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल इस साल 21, 22 and 23 augustus होगा Zuiderpark Den Haag शहर में। Standhouders kunnen zich aanmelden via de website milansummerfestival.nl. Dus wees er snel bij.

0: उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म बॉबी ऋषि की लव स्टोरी, उसी फिल्म से गाना बस प्रोग्राम में आपकी बार पेश किया जा रहा है।
1: हो रहा है प्यार क्या यार,

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनवालू की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनवालू, एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 और 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होगा साइडो पार्क देन हाग शहर के अंदर में। हर साल की तरह इस साल भी साइडो पार्क देन हाग में 21, 22, 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होगा, मिलन होगा। आप हर एक को खबर किया जा रहा है। ग्राम फरहूर यानी कि ग्राम फरहूर के लिए टिकट के लिए जरूर आप जाइए रेडियो SBS या कहिए समर फेस्टिवल मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगी। फॉर हेट आन मेल्डन फन क्राम फरहूर और टिकट के लिए सभी और सभी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर आपको दिया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल .nl। लेकिन मत भूलना 21, 22 और 23 अगस्त इस साल मिलन समर फेस्टिवल होने वाले है साइडो पार्क देन हाग में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं धुरंधर फिल्म का नाम।

रेडियो SBS की जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। सुन वालों, आने वाले रविवार 24 तारीख मई जो भी नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई में, अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर।

रेडियो SBS के जरिए परम सुंदरी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए अभी प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और ठीक 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को अभी मैंने खबर किया कि आने वाले रविवार सोंदा 24 मई रोटरडम आहोई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं, तो अपना टिकट जरूर आप जाकर जल्द से जल्द खरीदिए। वेबसाइट iStripTickets.com, उसी वेबसाइट पर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। चले नौटियाल, जुबिन नौटियाल के आवाज में ये गाना, और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। मैं था आपका खिदमत गुजार अरविंद, मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 7 का वक्त 7 बजे।

किशोर कुमार के वास में अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आप इक्का खिदमतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

0: लगे। माइटी मुकेश के आवाज में भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से
1: ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो मालमा।
0: सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फरके सिफमासी
1: नहीं जो,
0: और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

तीन बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है। 4 मिनट 9 बज रही बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहे यहाँ से ओवर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना।

रिबन पंचम के बाद में भी आप सुन रहे थे के काले काले बालों पे फूलों का कजरा, और अब की बार सुनते रहना रॉय जगन के आवाज में।

मुझे नींद नहीं आई कि सवेरा हो गया। किस जगह से रहो साथियों के पास में, अभी आप सुने थे विजय बच्चा सिंह के पास में स्पेशल रिक्वेस्ट, सुनते रहना वो भी डॉयचलैंड से हेना जेन राइटर की पसंद, सुनते रहना।

के चल चल रे दुल्हनिया चल, विजय बच्चा सिंह के वॉइस में अभी आप सुन रहे थे डॉयसलैंड से, है ना जेन राइटर की पसंद अभी आप सुन रहे थे।

अर्जुन अवतार और साथ के पास में भी आप सुनते आज की बैठक गाना प्रोग्राम से एक सुंदर सा कवाली राजू सिंह गुलाम के पास में सुनते रहना देन बॉस से नीता महावीर की पसंद सुनते रहना।

0: राजू से गुलाम और साथियों के पास में भी आप सुन रहे थे डेन बॉस, डेन बॉस से नीता महावीर की पसंद।
1: चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख
0: रामदेव चैतू के पास में

के शाम आइयो न हमरे नगरिया में। रविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में सुनते रहना सुसी सुसी जिन्नू की पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

रविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में अभी आप सुन रहे थे सुशी सुशी जिंदू की पसंद, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से

चार बजकर इस वक्त 7 मिनट गुजर रहा है, 7 मिनट ओवर फिर लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS और वो भी शेरी ट्रैक के अंदर से। शांति सिंह नंदन के आवाज में सुनते रहना

शांति सीयु नंदन के वास में भी आप सुनते हैं 032-62-66-11 स्टूडियो का तारक नंबर वैसे फरमाइशें इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए यानी कि हर एक रेडियो के काम के लिए आप तार कीजिए वो भी 24 घंटा लगातार आज नहीं तो कल जरूर से आपके काम आ सकता है 5-66-66-66 आप तार कीजिए।

मेरे बेदी के फेर मत तोरो, नहीं तो उमर उमर वागी दोसाइन के बाद इसमें भी आप सुनते हैं प्रोग्राम से तनाव से बेया बेया रामोतार की पसंद सुनते रहना।

मोहन के मुरलिया बाजे तैनाक से बेया बेया रमोतार की पसंद। अभी आप सुनते हैं

फाजिल वादी हुसैन के आवाज में भी आप सुनते प्रोग्राम से, और अब की बात रकेश यंकरन के आवाज में के बलमवारे काहे काहे रथिया तू ना ले रे, रकेश यंकरन के आवाज में

सुरेश हीरा के वास में भी आप सुन रहे थे तपोस, तपोस से प्रेम मताओ का पसंद भी आप सुन रहे थे। हम देव चैतू के वास में सुनते रहे।

में कोयल ने बोला। उस्ताद के उस्ताद रामदेव चैतू के वास में भी आप सुन रहे थे परवेश पीर खान के वास में सुनते रहना।

0: परवेज पीर खान के आवाज में भी आप सुनते और अब की बात
1: मौसी रसोइये
0: के मौसी रसोइये हलवा
1: मौसी रसोइये
0: राकेश यंकरन के आवाज में
1: अरे बथरवा को जे
0: नीवखैन नीवखैन से रिक रिक जिन्नू का पसंद सुनते रहना।

हेंद्रक छेदी के वास में अभी आप सुन रहे थे कि एक बोतल दारू हमें तू बेच दे। आज बजकर इस वक्त 10 मिनट गुजर रहा है 3:05 लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS

हर रविवार को शाम में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS और वो भी शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना।

0: Randy Reckless और साथ में Messenger of Love. Raybon Ramdrain के आवाज में भी आप सुनते हैं
1: और लेसी बताया रोल इट.

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फिर केस इंफॉर्मेशन और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका सिंधु सरग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शाम शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयुध फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिनिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इस फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इट प्रोग्राम गीतों की लहर फिया रेडियो SBS।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ल दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस आउट द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

0: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत was uit de film Tiger जिंदा है। Het volgende liedje in het programma Gitong Kille Her via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en komt uit de film Heroine. लाइफ की नोटी कहानी ये हल्का जवानी।

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।